0: तुमको वाफी
1: रिफा म्यांसनुल्ला नूना तिम्यासन तिक्यां सहया आर मनाम प्यासियां न तेरे कड़े ते तंबाउप शिक्या दिमनुना न फितुंड्रान आर जन मनुना फितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्म्यात्से सकुर फम्यासा आम फापन सुना आर म्यासा न्यापंदियन फितुंड्रान मातेत्या मायनों ने बात क्यान फरानिस नांगना आर निसन ताकें तिफना फोसंतिया रानिस फोलुने कोलोनेल मिकाएला फारुआन मालाकास म्यारा मेंजा आर साथीके नुम्तेनें जान चीशावकने अंदां जान चीशावक निसलुकें जान्या फसान मसावा जान तोम ततारं तिफिरेनेंती कदेमानों अंचावं तिकेरेटारेट tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity firenena ity tsy mory zany sarotro zany kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम कुफा भी
1: पापला लंबो फ्रेटो माता कास्चरों फनारा क्वाजा देची ची सिद्धे नौ फोका चारों साले पापला लंबो फोट सिद्धे माता कास्चर शॉटिंग टिंग नौ कौनसालियां देंदे शामिया फसाले फ्लाज़ फोका शामिया शामिया रातुरों दे शामिया फनान तेले दे शामिया फसाले फंदे शकोनास Someone of Lazan, sir. I was on the water meal for Rayano, the Avantinian, the meal for Rayano, the Avantinian. Steam tools only.